0: स्वदेश टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7071 र 98 550 7073
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4395 580 र 98 550 2640
0: It's 11 o'clock. अहिले 11 बजेको छ।

0: Police
1: back.
2: My Inspector Priya. तिमार लपोट निकोलाई कई समय देखी यही गाँव में यही गाँव को गाँव ले बाहर बसी रहते तब अलग तो मजे नायक समझे को थे तब ऐ तकल नायक पुन निस्किन बाय
3: मलबन तिमला लक्ष्मी में सोचे को थी तिमी तो माँ दुर्गा निस्कियो डायलॉग बाजी पौड़ी भायो जाटुक पारे रखाम सके आला ना खाया तलियो बाय द वे डीएसपी सपूत
4: हजुर छरीबा
2: त्यो चेलीबेटी बेच्नेलाई त हामीले पक्रियो नि
4: हो राम्रो भयो त्यस्तालाई त पत्ता फर्कनु पर्छ
2: अनि आमा कहाँ हुनुहुन्छ
4: ए तेरो आमा काउली बेच्ने गएछ

0: टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5550 7071 र 0855 5570 53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4493 580 र 0855 5570 2640
0: It's 1 o'clock. अहिले 1 बजेको छ.
4: ल्यान्डस्केपको म्याप बनाएर यसलाई

0: तेरो असलियत खोल दियो मो सब आस्तोन को मच्छी को अगर तेरो असलियत खोल दियो
1: मतलब कोई भी माफ कर दिना जा
0: तो गई आलिया बटा

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी जी
0: हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे, हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।

0: इस समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5359 63 53 98 550 77 061 र 98 550 77 053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4394 440 4395 580 र 98 550 26 440
3: It's 10 o'clock. अहिले 10 बजेको छ।

0: 92.2 MHz स्वदेश टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन CMC हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0656-59-63-58-5570-61 र 98-5570-53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0656-493-440-493-580 र 98-550-26-440
0: It's 5 o'clock अहिले 5 बजेको समय